राक्षस का काटा सीसा, श्री अस्केत जगा के ईसा, वह अपन भ्रष्ट गगन ते पही, सभन आन बधाई गई। धन्य धन्य लोगन के राजा, दुष्ट दाह गरीब निवाजा, अखल पवन के सृजन हारे, दास जान मोहिले हो बारे। एकवंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, पातशाही दसवीं, कवियों बाच बेनती चौपाई।

0: सत्य तेरे खंड सत्य ब्रह्मण सत्य तेरे लो सत्य आकार सत्य तेरे करण सब विचार सत्य तेरा अमर सत्य दीवान सत्य तेरा हुक्म सच्चा फरमान सत्य तेरा कर्म सच्चा निशान सत्य तो दाखिला करो सच्चे सब तान सच्चे सब दू
1: सच्ची तेरी सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे बाजा नानक सत्य सच्ची जो मर्ज में सो कट कट महला पहला
2: वड्डी उड़े जा वड्डा ना वड्डी उड़े सत्या वड्डी उड़े निश्चल था वड्डी उड़े जाने ला वड्डी उड़े बिर सपाओ वड्डी उड़े पुछंदा वड्डी उड़े जा पिया नानक और नक थिंज की तक ना सर जा
0: महला तू जा एक सच्ची की एक कोठरी सच्ची का बजबाल एक नाम कुमाल एक नाम कुमार बनास एक नाम पाने कडले एक नाम आया बिचनवाज ए पी आखन जा पे किशन रा नानक गुरु जाने जाको आप

0: सत्कर्ता श्लोक मला पहला बिस्मार नाथ बिस्मार बैर बिस्मार जी बिस्मार बैर बिस्मार रू बिस्मार रंग बिस्मार नागे फिरे जन बिस्मार पौन बिस्मार पानी बिस्मार अग्नि खेरे बडान बिस्मार तरती बिस्मार खानी बिस्मार साधके प्राण
1: बिस्मार स्नोक बिस्मार बिजोग बिस्मार पुख बिस्मार पोह बिस्मार शिफ्ट बिस्मार सला बिस्मार औदल बिस्मार दरा

0: सब इस तुक नु गायन करो और सिंह दिस इज द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब सोट महला
1: चौथा
0: चौथा सब मिलके करो कीर्तन।

लग रहा है जैसे सपना विनसत लगना बा बारू पीत बनाई राजपद रहत नहीं दिन जा तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवा अजो समझ रच बिगड़ो ना अजहूं समझ कच बिगड़ो ना भजले नाम मुरा भजले नाम मुरा।

मांगो राम थे एक दान, आई बेग फॉर वन गिफ्ट ओनली फ्रॉम द लॉर्ड। मे ऑल माई डिजायर्स बी फुलफिल्ड मेडिटेटिंग ऑन एंड रिमेम्बरिंग योर नेम ओ लॉर्ड। पॉज। मे योर फीट अबाइड विद इन माई हार्ट एंड मे आई फाइंड द सोसाइटी ऑफ द सेंट्स। मे माई माइंड not be afflicted by the fire of sorrow. May I sing your glorious praises 24 hours a day. May I serve the Lord in my childhood and youth and meditate on God in my middle and old age. O Nanak, one who is imbued with the love of the Lord is not reincarnated again to die.

सफल हो, मन में लायो पाओ सुख सहज आनंद गाना। गुरबाणी गावो पाई सुख सहज आनंद गाना, तब जपत्या दुख जाए, नानक नाम जपत सुख।

सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है। सतगुर की रीसे होर कच्चू पिच्चू बोल दे से कूड़िया।

तेरी सेहत तो बड़ी चंगी है और तेरी अखा खराब हो गई है, हंसता जो मैंने खिलाई देता है। अब ते कह लगा भाई जी अखा खराब नहीं हो गई, मैं क्या तेरा ऐसे क्यों लाई है? कह लगा न्यू लाइट नहीं है ना क्या अखो श्रीव। मैं क्या भावे अखा की लाइट मुक जाए पर न्यू लाइट तो जरूर जाए नहीं सकती कहने। पर सारिया अखा डॉक्टर को लग गई। बाबा जी कहते सन इसे तरह तंगुर मारे से व्यापार भी एनक लगदिया हैं, इस मालिक ने व्यापार भी एनक लगदिया हैं, कोई पुत्र भी एनक लगाने वास्ते आ जाता है, कोई माया भी है साहबा जी माया चाहिए मिल जाती है, कोई वही चीज नहीं। इतना बड़ा चलता है फिर में चीज चीज को राज पार ब्रह्म गरीब कोई मान मुटियाई भी एन करवाने वास्ते आ जाता है, कोई मकान भी एन करवाने वास्ते आ जाता है, और बाबा जी कहते सन कोई गुरु नानक में दर्शन करने वास्ते एन करवाने वास्ते आ जाता है। बाबा जी महाराज कहते सन लोग दुनियावी एन करवाने वास्ते तो सारी दुनिया आती है पर धन गुरु नानक में दर्शन करने वाली है भी कोई निर्भर कोई फिर ना आके अरदास करे पारो तेरा भाव।

इंसाफ रह जाएगी। दर्शन की अजराय उदास रोता चल जाए, मेरे धनुर्दास जाता है एक मेरी दर्शन। तलुंडी के सारे रहने वाले बड़े हैरान, राय बदार दुखी हो, हर मेरे गुरु नानक की गुरु नानक टूटता फिरता है, राय बदार चला हो गए। राय बदार दुखी हो, हर मेरे गुरु नानक की गुरु नानक टूटता फिरता है, राय बदार चला हो गए। राय बदार पढ़ता है ते कहेगा प्यारे हो, एक गुरु नानक का प्यार जो मैंने मिलिया हो नहीं, एक तो अंत का प्यार है, अदम का प्यार है, पता नहीं कि जन्मों का प्यार है। तो राय बदार रोज क्यों उन्होंने कह देता है कि

आवाज पकड़ी ओरी आवाज करके सारे उन्हें बच्चे सारे संत माई भाई बख्शिश वाली रात है मेरा वाली रात है और मेरी सास प्यार ना सारी करो बता।

प्रदान कर रहे थे। पेड़ों में काली दिया बुलाए बड़े सत्कारना आ कालू छुड़ा कोई मेरे कहीं गुरु नानक दीक्षो

मैं अरदास कर नानक आवेगा नहीं नहीं जे मैं अरदास की थी तो आंदा नानक भी वापस चला जाएगा आप खुशी वाले क्योंकि मैं वो माया का कीड़ा हूं जिसने 20 रुपया बदले गुरु नानक के थोड़े मुकड़े से चंदेड़ा पाया 12 साल के विछोड़े में एक रोते पुत्र में विछोड़े थे अज पैसे कालू में भी निर्भर करते पश्चाताप पै करते हर जामन वो हर जिना सनार मैं लाल के सोने मुकड़े से चपेड़ा पड़े अज्ञान कर एक दिन कह दिता नान जी पिता जी रेगे रह के कम नहीं चलेगा कोई काम करो जो आगे लैली रुपये लै जा कोई सौदा कर कोई बिजनेस कर मैं तेरे नाम का भाई बाले को तोड़े बाले नाम कभी अनजान है तू ख्याल रख अब तभी आ रहे की बजाते लिया भी तो बच्ची पर रुक होनी चाहिए चले गए जंगल के टके सारुआ का झुंड बैठा अरे कह लगे बालिया जी महाराज आपने ना बहुत पुरुषों के दर्शन करे रब दे प्यारे रब दे प्यारे के दर्शन कीतिया रब चेते आंदे आवे सार चित तेरे भगता मन की कपिए बैल सार संगे बाले ने क्या महाराज आप जेड़े कम है वो करिए सानू की लोड़ है क्योंकि बाले को पता थी अभी सारा अर्घों का प्यार करना कितने इसी में समाधि लगा के बैठा है अरे कह लगे बाले बाप पुरुषा ने दर्शन पाना हर चंदा महाराज आए इन्हों का जरा मन सी बड़ी वधेरी उम्र का चिट्टा अजुत वर्गा था एडा वा लिटा का उसे जुड़ा किया हो ने आके आदेश दिता इन्हें पर खुद सत्कार मार दिखाया दुनिया दाता देने वाला दुनिया का राजक मेरा धन गुरु नानक अब उन्हें प्यार नाल पुछया मारा ही सुनाओ भोजन छके अब कुछ इस तरह मां प्यार जाके पुत्र नु कहती जो पुत्र प्रशादा छक ले ये तो छक लिया तो मां में ले रख जाए तो ये नहीं छकिया था तो सच्चा पिता आज कुछ के मंत्र ने किया महाराज कितने दिनों का पूछ ले लो एक दिन का दो दिन का तीन दिन का इन्हें क्या 5 दिन हो गए हम प्रशाद भी सब का प्याला पी के बैठे हजू कह लगे बाले जी महाराज पिताजी ने की किया सी पिता ने किया कि खरा सौदा करे है सच्चा सौदा करे है जिन्हें ना हो हजूर कह लगे बाले इस तो वाला सच्चा सौदा हो कोई ना वाला कोई सौदा नहीं तो की करिए 20 रुपया का सीधा ले आके भूखे साधुआ भोजन बाले यार महापुरुष ने मोह जिस वेले अन जाएगा रब खुश हो जाएगा गुरु नानक पाके सुन भाई बाला ये सौदा है लाभवंत अब करिए सबका तेरी नजर भाई बाले ने बड़ा समझाया महाराज पिता के गुस्से में जान दो कि नहीं बाले पिता ने ही किया खरा सौदा लाभ वाला ये सब हो जाए चूड़काने जाके सीधा लिया प्रसाद तैयार किया महापुरुषों ने छकाया तेरे सारे ने छकिया प्रसाद भुखे में रोटी मिल जाए शांति आए सारे प्रसन्न है तो जरा देगा महापुरुषों का मन सी उन्हें अंदर ध्यान होके कटिया तो जो मना उमरा छोटी जाए काम बड़ा वड्डा चीज है कि प्यार लाए किसी को प्रशादा शिकार ना अपने पता नहीं ये कौन है जिस वे महापुरुष ने उसने अंतर ध्यान होके

सारे महापुरुषों ने साधा ने धन गुरु नानक अगे नमस्कार की सारे ने कहा धन गुरु नानक चले उठे साधुओं ने पछाड़ छका के हजूर वापस मुड़े तलवंडी में नेड़े आए कह लगे बाले बालिया असि तो इतने बवाने तू घर चल आया। बाले ने किया बड़ा समझाया कि नहीं समझे गलती कर बैठे हैं हूं इतने लुक के बहना चाहते सतमच बाला अपने घर आ गए कालू उड़ीकता पिया नानक सच्चा सौदा करने वास्ते गया होया आया नहीं किसी ने क्यों नहीं था जी भाई बाला आ गए। अच्छा फिर नानक क्यों नहीं आया। मैं क्या कालू भाई बाले के घर चला बाले जी बैठा नानक किथे भाई बाला बोले मैं तेरे फिर पूछे नहीं बोले तीजी वेली हौली जी गया उथे वणा दिया चंगिया में लुक के बैठा क्यों क्यों लुकिया है पलाए दसो भी रुपये थानू दिते सन कितने क बना के लिया भी ने तीह के पच्ची बाले ने किया मैं ताजी रुपये की बना के लियाने सन तो मूड़ी गुल हो गई है आखो श्री बने मूड़ी और किस तरह सारी विख्या कर कालू के अंदर गुस्से की ज्वाला बल तेरा लाल हो गया किथे है नानक अज मैं नानक नु जीवदा नहीं छा मेरा घर उजाड़ जा रहा है नेता काजू क्रोध पिंडाल माता तृप्ता नु पता लग जाए अज बड़ा गुस्सा आया होया है पता नहीं मेरे लाल लाल की करे बुलाया नहीं नानकी जी अम्मी जा तू जाके पिता नु समझा दे कोई भी 20 रुपये ही है बेबे 100 रुपये मां ने सोचा नौजवान धी घरों पर भेज दिता पिछे नौकर नु भेज दिता नहीं रह सकी मां आप भी मगर मगर कर ली कल पहुंच अगे हजूर समाधि लगा के बैठे पता नहीं कहे प्रोग्राम पे सोचते जगत जनते ठंड पाने वास्ते पता नहीं दाता कहे विचार जा भी आई पैसे कालू ने हजूर की बालू पकड़ के खड़ा कर लिया ते गुस्से में लाल अखा करके गया कितने हर मेरे वीर भी कल सुनत दुनिया का दाता हजूर ने एक मेरी अखा खोल के पिता वाल तकिया फिर नजर दिखी कर गुस्सा चंडाल ने इस चंडाल गुस्से ने किया तेरी सास संगत मैं ते कालू का खब्बा हथ फेरा ते मेरे धन गुरु नानक की सच्ची सच्ची गल दे उते चपेट बैठी सोहना मुखड़ा गुलाब वाला मुखड़ा इतना सोहना मुखड़ा चपेट बजी गुलाब दिया पंखड़ियां कुमलान लगे नीर पै गए देते पहुंच गई देवे ने सोचा चंगे मौके से पहुंच गई आज मेरे पिताजी ने वीर वास्ते कुछ नहीं किया पर जो तेरे अगे होके तकिया की तकिया नरंकारी वीर ने सोने मुखरे से नील पै उपा मार के रो कह लगी पिताजी मेरे वीर नाम है रबी वीर नाम है मैं देखी कहती है

पूछा बादशाह, बड़ा आदमी कौन है? उसकी बहुत सी कारें हैं, उसकी बहुत फैक्ट्री है, उसके बहुत से बंगले हैं। नहीं, जो संगत के अंदर आकर अपने अहंकार को छोड़ता है, वो ही सबसे बड़ा इंसान है।

आसो टूटी क्यों बने जाके जी सो क्यों विसरे जे गाल न पाने सो क्यों विसरे जे किया जाने सो क्यों

मैं ते परम गति सब तो उच्ची अवस्था अकाल पुरख वाहिगुरु नूं मिलन दी जो है वो पाई है किस तरह साध संगत दे द्वारा। सो साध संगत ही वो टंग है, साध संगत ही वो विधि है, साध संगत ही वो रस्ता है जिस दे द्वारा प्राणा दा नाथ प्यारा वाहिगुरु मिलता है। अगलियां पंक्तियां दे विच भगत गुरदास जी ये दसनगे कि साध संगत उन्होंने किवें कीती।

0: कहते हैं मैं परम गति पाले ही हूं। सब तो ऊंची आत्मक अवस्था अकाल पुरख वाहिगुरु दे मिलाप दी पाले ही है। भक्त रविदास जी दस दहन के मेनू ते सात संगत दे द्वारा ही प्राप्त हुई। बाकी दे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच वी इस आईडिया नू इस तरह सपोर्ट करते हैं, इस दे नाल सहमत हैं, इस दे नाल इकमिक हैं, अते ताकीद करते हैं कि इंसान अजिज्ञासु अशीकर जे तू उस अकाल पुरख वाहिगुरु नू ढूंढना मिलना चाहना है जो कि तेरी जिंदगी का निशाना है तो सात संगत तो अलावा होर दूसरा कोई रस्ता नहीं। महाराज जी बाणी च इस तरह आखते हैं कहते हैं
1: संत जना के संग मिल बारे
0: ओ कमले इधर उधर ना फिर

साथ संगत दे विच आत्मक तौर ते अंदरले जीवन वल्लों रूहानी जीवन वल्लों स्पिरिचुअल लाइफ वल्लों आत्मक जीवन वल्लों जो बिल्कुल खत्म हो चुका है मरिया होया इंसान है किंतु साधु दे टच दे द्वारा साधु दी जो एनर्जी दी फील्ड है उस दे विच आंदियां ही किंतु ओ इंसान भी द्वारा जिंदा हो जाता है उस दे विच भी रूहानी जीवन की शुरुआत हो जाती है साध के संग सदा प्रफुल्ल साधु दे संगत दे विच हमेशा इंसान की जो सोल है वो डिवेलप करती है वो ब्लूम करती है इस करके गुरु बाबा जी भगत रविदास जी दे इस आइडिया नू बाणी दे राही सपोर्ट करते हैं उस दे नाल सहमत हैं कि गुरुआ दी भगतां दी एक ही विचार है वो ये है कि अकाल पुरख वाहिगुरु जो प्राणा दा नाथ है वो सबना दा प्यारा है अगर उसनू मिलना है तो एक ही ढंग है वो है साध संगत प्रेम नाल गाओ।

बहुत कमाल की गल बाबा जी बाणी चाकते हैं कि जो साधुओं का संघ है वो सिर्फ इत्थे ही काम नहीं आता, किसी होर दुनिया च भी काम आता। बाणी का प्रमाण सुनो, कहते हैं

साधु मित्र हन जिन्होंने ढूंढ सज्जन संत पक्या जिन्होंने पक्के हुए आत्मक जीवन दे विच प्रपक साधुओं दे नाल अपनी मित्रता पाई है, कहिंदे हन ऐ जिहड़े कच्चे हन इन्होंने ते इत्थे ही छड़ जाना है। कहिंदे हन तुहाडी रूह नूं ओह खुआर नहीं होण दिंदे, तुहाडी रूह नूं भटकण नहीं दिंदे। साधु संत दोनों जहाना दे विच तुहाडी जो है वह संभाल करते हैं। इस करके साध संगत नालों वड्डा होर कोई टंग ही नहीं है भक्ति का। इस करके होर सारिया विधियां जिहड़ियां हैं वह साध संगत के मुकाबले दे विच कुछ नहीं हैं। प्रेम नाल गाओ।

रिजल्ट सामने है वो आप आख रहे हैं कि आई हैव अटेंड द हाईएस्ट स्टेट ऑफ माइंड परम गति, लेकिन साडे विचों इमानदारी दे नाल असी अपने अंदर देख के अपने अंदरों अपनी आवाज नूं सुनिए, इज देयर एनी वॉयस विच सेज दैट आई हैव फाउंड समथिंग। मैटर ऑफ फैक्ट जदों लोग कई कई सालों तो बाद गुरुद्वारे दे विच आंदे रहिंदे हन जांदे रहिंदे हन एंड फाइनली दिसे के ना सानू कुछ समझ आंदा है ना साडे बच्चों नूं कुछ समझ आंदा है, कुछ मिलता ते, इज इट ट्रू और नॉट, सच है या नहीं। सानू ओ परम गति ओ आत्मक अवस्था वाहिगुरु का मिलन क्यों नहीं हुंदा जबकि असी भी साध संगत करते हैं, अपने वालों तो करते हैं, अपने वालों तो आने ही हैं, पर कोई लाइफ दे विच ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं हुंदी, कोई लाइफ दे विच तब्दीली क्यों नहीं आती, बदलाहट क्यों नहीं आती। साड़ी साध संगत करन दे विच अते भगत रविदास जी की साध संगत करन दे विच अंतर की है, फर्क की है, डिफरेंस की है। आओ भगत रविदास जी कहते हैं साध साध संगत जो मैं की, साधु की संगत जो मैं की, साधु महापुरुष के पास जो मैं आया, दैन देर वॉज ए बिग कॉन्ट्रास्ट। साधु नूं मैं देखिया, अपने आप नूं देखिया, जिंदगी दे विच जमीन आसमान दा अंतर नजर आया। साधु टिकाओ च देखिया, मैं अपने आप नूं पटकन च देखिया। साधु शांत देखिया, मैं अपने आप नूं अशांत देखिया। साधु तृप्त है, कंटेंटेड है, लेकिन मेरे अंदर खाशा ही खाशा हैं। साधु नूं कोई भी मिलता है, साधु दा एक समान प्यार हरेक नूं मिलता है। मैं जदों मिलता हां हरेक नूं इक्को ही तरह नहीं मिलता, किसे नूं प्यार ना मिलता हां, किसे नूं फर्जी तौर ते ही मिलता हां, किसे नूं मिलना ही नहीं चाहता। पर साधु दा दिल इतना ओपन है और उस दे विचों निकलता ही सिर्फ प्यार है, ऐसा कॉन्ट्रास्ट देख के साधु दे पास बैठिया पवित्रता ही पवित्रता है, कोई मैला ख्याल ही नहीं आता। साधु दी जिंदगी च मैं एक मर्यादा, एक लयबद्धता, एक जीवन दा डिसिप्लिन देखता हूं। साधु दे जीवन दे विच उठन च, बैठन च, बोलन च, चलन च, पहनन च, हर गल दे विच एक ग्रेस है, लेकिन अपने जीवन दे विच मैं देखता हां ते जीवन बेटगा है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई ग्रेस नहीं है। कहिंदे इतना वड्डा कॉन्ट्रास्ट देखिया ते मैं पाया कि मैं किथे हां, मेरी अवस्था की है और साधु दी अवस्था की है। मैनू सामने एक लाइफ मॉडल नजर आया, एक मिरर नजर आया जिस दे विच मैं अपने आप नूं रिफ्लैक्ट कर सके। जदों मैं साधु दे अंदर अपने आप नूं रिफ्लैक्ट कीता तो कहिंदे पहली इनसाइट, फर्स्ट इनसाइट, फर्स्ट अवेयरनेस विच केम टू मी ओ ए सी, मैले कपड़े कहां लौ धोवो। पहली अवेयरनेस ए आई कि मैनू अपने अंदर मैल नजर आई कि मेरा दिल, मेरा अंदर मैला है। ते इस दे विचों ए होश आई, ए जाग आई कि जद मैं खुद ही अपनी मैल देख ली है कि मेरे अपने अंदर मैल है, और जितनी देर तक वो तुहाडे सामने कॉन्ट्रास्ट नहीं आएगा अपनी मैल नहीं दिसेगी, क्योंकि पवित्रता ही साडे सामने आवे तो सानू अपनी मैल दिसेगी। ते महापुरुषां दी पवित्रता ही दे सामने जदों मैनू अपनी मैल दिसी ते मेरे अंदर फौरन यह सवाल पैदा होया कि मैं दूसरियां दे मैले कपड़े कदों तक धोंदा रहांगा जबकि अज मैनू अपने अंदर भी मैल नजर आ गई। ये आख रहे हैं।

बहुत प्यारे वचन हैं। ये शब्द इतना इतनी प्रफाउंडनेस दे नाल भरिया पिया है कि असी इसनू अपनी जिंदगी अगर कमा लईए, इसनू वरत लईए, तो साडा जीवन भगत रविदास जी की तरह बदल सकता है। भगत रविदास जी कहते हैं, फिर मैं की कीता, जोई जोई जोरियो सोई सोई फट। जो भी अपने अंदर सुभा जोड़े हुए सन, सुभा पकाए हुए सन, इन्वेस्टेड हैबिट्स सन, कहिंदे उसनू मैं सारे नू एक कचड़ा समझ के पाड़ दिता। जोई जोई जोरियो, असी कई दफा एक दफा किसी नाल नाराज होने हाँ, फिर उसनू असी अपने अंदर जोड़ लेने हाँ, उस नाराजगी नू फिर सारी उम्र रखते हैं। किसी ने अगर सानू कोई बुरा शब्द किसी वेले कह दिता है, वह फिर सानू सारी जिंदगी याद रहिंदा है। जो भी उस परसन नू असी देखते हाँ, उस रेफरेंस दे विचों देखते हैं, उसे रेफरेंस दे विचों देखते हैं। मेरे नाल किसी ने बुरा किया है, उसनू असी भुला नहीं सकते। कहिंदे जोई जोई जो रहे हो, अगर 10 साल पहला किसी इंसान ने कोई गलत काम किया है, वह सुधर भी जाए तो साडिया निगाहों के जदों असी उसनू मिलांगे देखांगे तो असी यह कहांगे सानू पता है 10 साल पहला किदां दा हुंदा सी। दिस इज अवर नॉर्मल बिहेवियर। 10-15 साल पहला अगर किसी इंसान का जीवन किसी होर किस्म का सी, जो कि बहुता एक्सेप्टेबल नहीं सी, लेकिन वो इंसान अपना जीवन बदल लेता है। उसने तो जीवन बदल लिया है, लेकिन लोगों ने ओपीनियन नहीं बदली अपनी। लोग उसनू यही कहते हैं कि जानते हैं असं इसनू 10 साल पहला की करता हूं। उसनू क्रेडिट दो, उसनू शाबाश दो कि इसने अपना जीवन 10 साल कितने का कितने ले आता है, बदल लिया है, ना कि तुसी उसे नू ही देखना है। बाणी दे विच एक साडी जो अवस्था है, साडी जो आदत है, उसके प्रति बहुत खूबसूरत लाइन महाराज ने दर्ज की है। कहते हैं, माखी चंदन पर हरे जह बिगंध तह जाए, माखी चंदन पर हरे जह बिगंध तह जाए। जड़ी मक्खी है वह चंदन ते नहीं बैठती, उन्हू त्याग दिंदी है। जह बिगंध जिथे गंदगी है उथे जाके बैठती, उथे जाके बैठती। तो असी भी अपने जीवन दे विच किसी की खूबसूरती नू, किसी दे शुभ गुण नू जदों देखते हाँ, तो नाल दी नाल कोई उहदा कोई ना कोई अवगुण जां कोई उसका पिछला कर्म जरूर देखने की कोशिश करते हैं। भगत जी कहते हैं, मेरिया निगाहां च मैं अपने अंदरों जो भी जोड़िया सी कहिंदे सब पाड़ के रख दिता। अगर किसी नाल नहीं सी बनती तो उसनू जाके आप बुला ले। कोई अगर मैनू मैला लगता सी तो उसनू आख्या गले लगा के, भाई तू ही मैला नहीं, मैं तेतों भी खुद ज्यादा मैला। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाट। जेड़े गलत सुभा पक चुके सन, आलस का सुभा गलत है, निंदा का सुभा गलत है, चुगली का सुभा गलत है, होमे का सुभा गलत है, उच्चा बोलन का सुभा गलत है, कौड़ा बोलन का सुभा गलत है, ये सारे पक्के हुए सन। कहिंदे ओ सारे दे सारे मैं, दिस वॉज द सैकेंड इफेक्ट ऑफ द साध संगत, कहिंदे मैं ये सारे दे सारे फौरन पाड़ सकते, डिले नहीं की। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाट्यो, झूठे बंज उठ ही गई हाट्यो। वह कहते जी झूठ की दुकान खोली उसी मैं, वो उठ ही गई है, खत्म ही हो गई। अखीरली लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही अर्थपूर्ण है, जिस दे विच भगत रविदास जी आखते हैं, पहला उसको सुनो फिर उसका असं अर्थ करांगे।

राग गौड़ी ग्वारेरी विच ऋषभ कोमल मध्यम तीबर अते बाकी सुर शुद्ध लगदे हन। इस दे आरोह विच ऋषभ पंचम अते अवरोह विच पंचम वर्जित है। इस दी जाति औड़व शाड़व वादी गंधार संवादी धैवत अते समा शाम है। इस राग विच गुरसिख हर बोलो मेरे भाई शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।

अकाल मूर्त अयोनि सहंगुर प्रसाद जप आप सच युगात सच है भी सच नानक होशी भी सच चक्र के निर्वर जात हर पात नहिंजे रूप रंग हरी पीत भूकर सत्य है अचल मूर्तन भव प्रकाश अमित तूज के हिंजय खूब चिंदन इंद्राम शाहो शाहान गणिज फिर भ्रमण में ही सुरनारासुर नीत नीत मंडन कह सब सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण समत सतगुरे आयु शरण तुहारी मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाए हमारी और न सूझे दूजी ठार आर पर तो द्वारी लिखा छोड़िया लिखा छूट है हम निर्गुण ले हो बारी सर्वक्षण सदा मेरवाना सबना भी आवारी नानक दास संत पाछा करू राख लियु ए बारी सतगुर हुई दयाल ता श्रद्धा पूरिया सतगुर हुई दयाल ना कम हो चूरिया सतगुर हुई दयाल ता दुख न जानिया सतगुर हुई दयाल ता हर रंग माणिया सतगुर हुई दयाल ता जम का डर के सतगुर हुई दयाल ता सद ही सुख दयाल सतगुर हुई दयाल ता नवनिध पाइया

0: अपने परत करें प्रतपाला अदर तेरी हड़ियाई नित नानक नाम तिहाई अदर तेरी हड़ियाई नित नानक नाम तिहाई
1: वाहे जी का खालसा वाहे।

ऐसे महान दर्शन दर्शन देखत ही शुद्ध की न शुद्ध रही बुद्ध की न बुद्ध रही मत में राम वही देख कर मैं तो अपना आप ही भूल गई दर्शन कर सपने ओ भी भई कहो की ना अर्चना उत्तम सखी मतम नु कह दी तने मैनु सपने चराती साई मिले तो मतम सखी कह दी फिर कहो की ना अर्चना उसका अंचल क्यों ना पकड़ ले सपने भी भई कहो की ना अंचल उसका दामन क्यों ना पकड़ ले उन्हू जान क्यों दिता तो उत्तम सखी रो के कहती है की करा सुंदर पुरख विराजत वो इतना सुंदर सी इतने जलाल वाला सी सुंदर पुरख विराजित पेख मन पंच दला मैं अपने आप की सुधि जिसे दिल मिलिया साई मैनु शुद्ध बुद्धि पुर मैंने शाने भी लिखे जब इश्क निवास चली थी इश्क दिन प्यार जब इश्क निमास च नीति की मंदिर ते की मसीदी इतने चीजें की कोई कमी नहीं हकीकत तो प्यार है ये प्यार नहीं तो मंदिर ची घटी उजाड़ का कोई ना मस्जिद च भी मत्थे टेकने का कोई हकीकत प्यार भुले शाह लिखता है जब इश्क निमास च नीती क्या मंदिर ते क्या मसीती फिर जब यार ने आन दीदार दिता यार को वाह धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने उस अकाल पुरख नू अपना यार